तो परम हर्षमवाप्नुवान् त्रिराचम्यासु चर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमतु सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतो भवतु अधरविरद निरीक्ष रामं मुदितमना परमं प्रभुष्यमाणः निशचरपदि सञ्चयं विदित्वा सुरगणमज्जगत्